0: चलो चलो जहाँ कान के को तीनों बाय सहा दर है उन्हें सोलंग का उन्हें
1: आर हुई सोलंग है सुमी आर हुई सोलंग जुगा
2: ना आय मत दा मी बोतली न्यामा करा
0: सिमोन आम तो आर हम आगो किधा बाम ये लेके ना बाय तार हाँ दर है कना
2: मोटे मी बोतल हिली नुआ तो नहा
1: ए सिमोल बोकों इन ताहिं ते आम तो चेड हो आलम भाभी तो आ एक चाकरी टाका तीन बुझ के दम तीना पोरम न्यूया
3: मस्तत न्यांग मस्तत न्यांग ओका से कौन
1: से जेड हो झागुल बाम मराया आम तो पाता नहीं तो बाम से न काम ते
3: बांगा ते न्यांग बहिं चलाओ दाढ़े आका होता नेस दो आदो चिल का को जावरा लेना
2: बाम चला तो हो कुंज रटे लकान ताहे ना चिकते बुझा चिल का को जावरा लेना
3: ओनाते के इन कुली जोंग कना ते न्यांग आम साव कटी गाल मरा ताहे कना
1: चेत गाल मरा हो झागुल
3: गापा से तारे बांकुरा अस्पताल चला हुई आ बाबा न्यूनल उनातीन मेहनत ताहें गेल तकागन एम हतारिंग में
1: इन चेन मतो ताका दो विषय बनु आ हो
0: अर इन्हन गेल मौत तक निमत में तो
1: नुआ तो ना खान तो पूरा ना दाम है मोहियो तिन्या
3: इमाइन खाने में भागे होइ को अतिन्या
1: ओहो कियन झागुल एकाली न्यो हो किया आम तो ऐटा जहाँ चुन निल हतार में
0: इमाइन में से
1: आम एमाय में से
0: आम के तो माता चबा करतीया इनठन ताहन खान
3: तेयान कटी दयालन खान एम
2: नेता मिया तो बाय एम दरियामा मुरु खोड़ इंगा ते कथा के बांकु पूजे
3: बाय मई खान तो जोर कते तो ओहन हताव किया जहां से ने नेल जों हुत तिया
0: आ तो चलो बन तड़ामा
1: हां चलो बन ताले ए ऐसी मोल के लिए सब मेरे दिन में से आ
0: देन साइकिल तो इंजन चलाव दिया
1: चलाव लड़े हम तो
0: हाँ हाँ
4: हम ते आमे कुली लेन खान यमाम सनाम तेला ठीक साई एम कमी दिया ठीक साई एम रोड़ा
5: रुपो बाबू
4: ओ कोई ओ झगुल्दा देला नुआ ओड़ा छेद रेगे दुरुप में
5: ओ ओड़ा भीतर एकदम पढ़ा कना
4: होय झगुल्दा पढ़ा कना ही सामंग रे वीडियो ताले या ओना तीन तैयारो कना
5: अच्छा है यार रूपो बाबू
4: हाँ
5: उन्हें बाड़े डिसिमल दो तीन अभी ओलो ए बड़ाया
4: है चों ठीक साइ तो बहिन ले दाड़े हम कना तो वे गेल क्लास बारपे धा वीडियो एम काते पारोम करा कष्ट मस्त थे
5: बारपे धाओ
4: होय
5: तैरे उना पुंडी तो दुगो कना नेतार तो भले रोड हम बाय रोड़ा
4: हाँ बुझेत गया हम तो झगुल्दा ओड़ा दूर रे किचु भाली के मेना तकवा तो निंकेन होड़ सा रोड दो
5: जाग गे उना को तो इने गलांग गाल मारवा अड़ी घड़ी इन बिलोम केत मिया नो नोआ चिट्ठी पढ़ाओ कतिन में से
4: चिट्ठी दे मारांग बुरु हिल मानतान झगुल बाबू
2: आम जहां कमीन कमी लगी दो कना ओना तो इक काम है मिश्रामा सगुन बापला लगी जहां कुरुमुटुईदा ओना दो इक कामे बांखान अडी एटकेटोरे रेम न्यूरुआ आर जुदी इंजे कथा बाम आंजोमा जोर काते गे मिश्राम जावाया एंडे खान बड़ाय का में मिश्राम दे रंडिया इंगे
5: चेनम पढ़ाओ आंजोमा दिया रूप बाबू होपन में इंगों का खान रंडिया है ओकोय कनाय चिठी भेजाती नी
4: न्यूतुम तो चेन हो ओल बानुआ
3: सादरे मिटेन मिश्राती अडी हुडिंग हुडिंग दे यूई गोज बगिया लिया यू गोज बगी तायम खन हपन मई दो इंगिन हराबुरु के दिया नितो पेड़ा को हेजना कुशी कुशलेना को मेनखान ओना हो जानी बांग गानोआ तोलकत गिरे दो आर हो जानी लाड़ा रुअर के होयुआ
4: बांगा झगुलता नोंकान चिठी कथाते तोल गिरे दो आलम राड़ा रुअरा मानखान हपन मई दे सासांग छाड़ी तो
3: सासांग छाड़ी लगे अद चेत इन उपया रूप बाबू हपन मई मलंग को चेताया
4: मलंग को चे तो बांगा झगुलता नुआ तो आमको बतल हचुद मे बापला को भांगड़ हचुद मे
3: भांगड़ रेगे चिकाया नुआ को आजम कते जावे हतो बांग को रेबे ना
4: रेबेन हचो को हुआ झगुलदा रेबेन हचो को हुआ जुदी जहाना को मेना एड़े खान चलाव कते सनामा बन लई बुझो को लागती लेन खान जावे बाबू गालमारावाया बापला भांगड़ लेन खान हपन मई सासांग छाड़ी केना होय तो आदो पेड़ा बांग को मेना मिद दिन हिलो होड़ा रड़ एके साह हुयुते ओनातिन मेताम कना हपन मई तो गोंकाय में
3: ओना के तो रूपऊ चेत इन चिकाया ओका बई ठीक दड़िया कना
4: आम तो एकल आलम हमना हाले तो मेना लिया दू चला में दू मने बांग रापुट काते हपन मई गोंग रेना कुरुमुटु।

0: छुटकी हो गए ना हमको। सुमी दला से काटी ही जू में गो।
1: अब चेट चिकाई ना चिका मी आई सारा दिन हम छुटके छुटके कान दो।
0: बोई बोई तो रोड में से सेदा उन्हें दम रागी गोद करना।
1: रागी बन चेता इन्हें तो कमी बनो तिन्हें तो आम गिन सेवक बड़ा मिया
0: चेत गोदों कारा पटू बैठते
1: बांग बन पटू बैठते के लाइक तो सारो करना मेटन होड़ ओका से दो इन दाका उतु निसे ना से आम ठेन के नि सारा दिन हेड हेड को दीदी हम लगा उठक के दिया
0: आम उते देगे तो
1: है हां इन दिन मितन में तहन लगा उठो के ओकरे पुन गेल मोने टका रुपा फॉर्म पूरन लगे रे एमा दे तहन उना तेम लगा उठक के दिया मानी तो बुझ में धमक ते
0: आम साउ दो ओय बुका को आ जा जहां गंगे दसे कोन रान लोटे को नहीं में
1: पाखा कौन रान सीसा हो बाम आगू धड़िया करना हने न्यू में
0: मेटन माली तो ना रे दूल गोटे में से देन
1: ओ एकदम मुचारे दूल हम हुई हुआ पर न्यू समय तो मुचारे बाम दूल हो चुका ना है एकदम हने न्यू में
0: हम होते थे क्या तो नूना इन कोराव के दागो आर आम के नितो दम आड़ी सही क्या ना बेजार इन क्या नाम हम सब संसार काते दो जानी ओहन जो मुचेत किया
2: चिदा या बाबू नूई तो ओलो ए बड़ाया चाकरी का ते टकाई ऊपर ही दा चिके ते बाम जो मुचेत किया
0: इकन में बाबा हमां कथा बांग अंजुम काते जीवन रे हाडी मारांगी हिरी जाका था हार होना हिरी खातिर गे तेहें इन्हें नौकाम दोषा हुई कांतिया
3: मस्ता दा मस्ता दा मस्ता दा मस्ता दा बंचा हिंग में बंचा हिंग में
0: ओ सिमोल यार इंगिंग गुजु काम दो यार चेट इंदिंग बंचा में यार
2: चेट चिके ना सिमोल बाबू दोड़ते मिजु काम दो
3: बंचा हिंग में बारंबा रुपया झगुल इनकिन दालिन लगी लगाया कुइन का नकिन
2: चिदा चिदा किन दाल मिया
3: जगुल दा चलो लगा लगा लगा नहीं नहीं
4: नहीं कैसे चला ना सभे में लोगों
3: नॉन नॉट बोलो अपने
2: में ये चिकन है जमाए
3: जगुल दा तक कोई जोपन मिया बापला भांगो लगी नहीं नहीं नॉन ना चिटी और ले आना है
2: हैं
3: नहीं
2: बापला भांगो लगी चिटी भेजा लेता
3: हैं
2: ताले बापला भांगो ना से चिता जमाए
3: बाना बापला तो हुई कान गया
4: लई में सिमल अब इन मिश्रा मा बापला लगे जदी नंकान चिटी को भेजा किया ताले चेनम चिके किया
3: इके खैन भी ढगुलदा आ तो नंका तो 30 हो बन कमिया नी तो द इकम खोजो करा चिटी और समय तो बाम उहेल लेरा
2: छी छी सिमल छी आपे तो नोय नंका चिटी को ओलो लागि गे ओलो पेसना कदा सि चिदिया
3: है बाबा है ओलो पढ़ाते तिनंग बारती को सिखने तो करा उना गे बुझ काते रहो बांग बुझ लेका को कमीदा
2: जमाय उना देखे तो तिहिं सिखनत छाता हो मुरु कावतर ना सिया डोभा दा रे जबे कना
3: आर इनकु होर के ना को लेया मुरु खोर के दिसम रे बिसी बाड़ी को कामीदा सांता को बड़ेदा नंका कामीते तो सांता तो बांग बड़े कना बांग से जागुलदा चलो चलो नुई काटी लाम पेड़ा को काय गंतरे सामने में चलो
0: रूप या या बिसी दे आलोबिन दाल तो लेया होर करे
3: तिनांग धीरु बिन मितम करा आमो बांकन बाली

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
3: अनुष्ठान निवेदन करलो भारत सरकार कृषि और कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবেন।
1: নমস্কার, এ আকাশবাণী হ্যায় সঙ্গীত কে অখিল ভারতীয় কার্যক্রম মে শ্রোতাওঁ কা স্বাগত হ্যায়। আজ হম প্রস্তুত কর রহে হ্যায় লয় বিন্যাসম। ইসমে পহলে সুনিয়ে বিদ্বান সেলম শ্রী কে শ্রীনিবাসন কা মৃদঙ্গম বাদন, উসকে পশ্চাৎ হম সুনওয়েঙ্গে বিদ্বান শ্রী চিন্ন ভেঙ্কট সুব্বয়্যা কা ডোলু বাদন। সঙ্গীত পরম্পরা মে জন্মে বিদ্বান সেলম শ্রী কে শ্রীনিবাসন কে পিতা শ্রী জাতা কৃষ্ণয্য ভাগবতর পারম্পরিক ভজন সম্প্রদায় কে গায়ক থে। উনোনে আপনা প্রারম্ভিক সঙ্গীত প্রশিক্ষণ আপনে দাদা জি কে রামস্বামী ভাগবতর সে প্রাপ্ত কিয়া। আপনে সেলম শ্রী কে কৃষ্ণমাচারী সে ভি সঙ্গীত কি শিক্ষা প্রাপ্ত কি। আগে বিদ্বান সেলম শ্রী কে শ্রীনিবাসন পুদুকোটে সঙ্গীত পরম্পরা কে কলেমামণি திருச்சி ஸ்ரீயார் தாயுமானவன்சே ககன் பிரசிக்ஷன் பிராப்தக்கியா. வித்வான் சேலம் ஸ்ரீ கே ஸ்ரீனிவாசன் 1987 மே ஆகாஷ்வாணி திருச்சிராப்பள்ளி மே பி ஹை கிரேட் கலாக்கார் கே ரூப் மே ஜுடே. ஆஜ் ஆப் டாப் கிரேட் கலாக்கார் கே ரூப் மே சேவாரத் ஹேன். ஆப் பாயே ஹாத் சே மிருதங்கம் பஜானே வாலே ஏக் அனோகே அவர் விசிஷ்ட கலாக்கார் ஹேன். ஆப்னே தேஷ் விதேஷ் கே அநேக் சங்கீத் சமாரோஹ் மே सुप्रसिद्ध कलाकारों के साथ संगत की है। आप संगीत सीखने में रुचि रखने वाले छात्रों को न केवल मृदंगम अपितु गटम कंजीरा और मोरसिंग जैसे वाद्यों का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आयोजित संगीत सम्मेलन, संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि में भी अपनी प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को संगीत का रसपान करवाया है। विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। इनमें उल्लेखनीय है नादलय शिरोमणि, नाद द्वीप रत्नाकर, लय तिलगम आदि उपाधियां। आज के लय विन्यासम में आपके साथ संगत कर रहे हैं कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंधनल्लूर श्री आर रंगनाथन और वायलिन पर धुन दे रहे हैं திருச்சி டாக்டர் ஸ்ரீ ஆர் கோவிந்தராஜன். லீஜிய சுனியே மிஸ்ர ஜாதி திரிபுடதாளம்.
2: நமஸ்கார், திஸ் இஸ் ஆகாஷ்வாணி. குட் ஈவினிங் அண்ட் வெல்கம் டு த நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் மியூசிக் விச் ஃபீச்சர்ஸ் லய விநியாசம். ஃபர்ஸ்ட் அமிருதாங்கம் ரிசைட்டல் பை வித்வான் சேலம் ஸ்ரீ கே ஸ்ரீனிவாசன், ஃபாலோட் பை அ டோலு ரிசைட்டல் பை வித்வான் ஸ்ரீ சின்ன வெங்கட சுப்பையா. To begin with, listen to Mridangam rendition of Vidwan Selam Shri K. Srinivasan. Selam K. Srinivasan hails from a traditional family of musicians. His father, Shri Jata Krishnaya Bhagavatar, was a vocalist of the traditional Bhajan Sampradaya. He received initial training in music from his grandfather, Shri G. K. Ramaswamy Bhagavatar, and later from Mridangam Vidwan சேலம் ஸ்ரீ வி கிருஷ்ணமாச்சாரி. ஃபர்தர் அண்ட் அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் வாஸ் ஃப்ரம் கலைமாமணி திருச்சி ஸ்ரீ ஆர் தாயுமானவன். அ ஸ்டாஃப் ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப் ஆகாஷ்வாணி சின்ஸ் த இயர் 1990, சேலம் ஸ்ரீ கே ஸ்ரீனிவாசன் இஸ் நவ் அ டாப் கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப் ஆகாஷ்வாணி திருச்சிராப்பள்ளி. அக்ளைம்ட் ஃபார் இஸ் யூனிக் புதுக்கோட்டை ஸ்டைல் ஆஃப் ரெண்டிஷன், ஸ்ரீ கே ஸ்ரீனிவாசன் ஹேஸ் அக்கம்பனிட் ஸ்டால்வர்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இன் கான்சர்ட்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் இம்பைப்ட் and adopted various styles in his rendition. A distinctive left-handed mridangam artist, he has traveled extensively for his performances, especially for Akashvani Sangeet Sammelan, South Zone Hookups and National Programs of Music. He is the recipient of several awards and titles. Selam Shri K. Srinivasan also trains young artists in lyre intricacies in mridangam, ghatam, Kanjira and Morsing. In tonight's program, he is accompanied by Tenkasi Shri H. Paramasivam on the Kanjira, Andanallur Shri R. Ranganathan on the Ghatam. Violin refrain is by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. Selam Shri K. Srinivasan will now play Mishra Jati Triputa Thalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे लय विन्यासम। कलाकार थे मृदंगम पर विद्वान सेलम श्री के श्रीनिवासन। आपके साथ संगत कर रहे थे कंजीरा पर तेनकाशी श्री एच परमशिवम, गटम पर अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन, वायलिन पर धुन दे रहे थे तिरुची डॉक्टर श्री आर गोविंदराजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुचिरापल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक फीचरिंग लय विन्यासम यू जस्ट हर्ड मृदंगम रिसाइटल बाय सेलम श्री के श्रीनिवासन। ही वॉज अकॉम्पनीड बाय तेनकासी श्री एच परमशिवम ऑन द कंजीरा, अंदनल्लूर श्री आर रंगनाथन ऑन द घटम। Violin refrain was by Tiruchi Dr. R. Govindarajan. The program was recorded in the studios of Akashvani Tiruchirappalli.
1: ये आकाशवाणी है। आज रात के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्री वी चिन्ना वेंकट सुबैया द्वारा तविल लय विन्यासम।
2: This is Akashvani. In tonight's national program of music, let us now listen to the Tavil Lai Vinyasam by Sri V. Chinnavenkata Subbaya.
1: Sri V. Chinnavenkata Subbaya Akashvani Hyderabad ke A grade tavil kalakar hain. Unki sangeet yatra ka prarambh varsh 1990 mein unke pratham guru Sri V. N. Lakshmi Narayan ke margdarshan mein hua. Baad mein unhone Sri Yalluru Sri Nivasulu tatha Sri Tirukadeyur T.G. Babu se prasikshan aur margdarshan prapt kiya. वर्ष 2018 में उन्हें तेलंगाना राज्य के श्रेष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019 में कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में तविल वादन के लिए उन्हें डोलू कला सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। वर्तमान में वे श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादागिरी गुट्टा में डोलू कलाकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें डीडी यादगिरी पर प्रसारित नाद स्वरम कार्यक्रमों में तवल पर संगति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश भर में अनेक संगीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। अपनी निरंतर साधना, समर्पण और गहन अनुभव के साथ श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया पारंपरिक भारतीय संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ नाद स्वरम पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री लोडगु वासु।
2: श्री वी चिन्ना वेंकट सुब्बैया इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट।

0: इसी के साथ राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रसारित श्री वी चन्ना वेंकट सुब्बया के तविल लय विन्यासम का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नाद स्वरम पर आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे श्री लोड़गु वासु। यह संगीत कार्यक्रम राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रसारित किया गया।
1: विद दैट वी कंक्लूड द तविल लय विन्यासम बाय श्री वी चन्नवेंकट सुब्बैया इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। It was supported on Nadaswaram by Sri Lodugu Vasu. This concert was recorded in the studios of Akashvani Hyderabad for National Program of Music and brought to you from the Delhi station of Akashvani.

0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। আসানসোল, বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাসন্তী, কৃষ্ণনগর, খড়গপুর, মালদা এবং বালুরঘাট রিলে কেন্দ্রের দ্বিতীয় অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি। এইসব রিলে কেন্দ্রের অনুষ্ঠান আবার শোনা যাবে আগামীকাল সকাল 6টায়।
1: बुखार आया है, इसे नजरअंदाज ना करें।
2: डेंगू या मलेरिया दोनों ही मच्छर जनित बीमारियां हो सकती हैं।
1: डेंगू और मलेरिया में कंपकंपी के साथ बुखार आना, पसीना आना, सिरदर्द, तेज पेट दर्द, बदन दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
2: ऐसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा ना ले, तुरंत नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाएं और डॉक्टर की सलाह लें।
1: घर के आसपास जमा पानी साफ करें।

0: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছিলেন গীতাঞ্জলি প্রসার তরঙ্গে মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। এখন শুনুন দিল্লি কেন্দ্রের খবর।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে কিরণ শর্মা। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस,

0: दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision SIR of electoral rules issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLO will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar urged restraint, de-escalation and enhanced civilian protection during ongoing conflicts, pointing out that the repercussions of wars are experienced far outside the border.